एक सॉरी बाली, एक सॉरी बाली, एक तमाम सा प्रॉमिस आते करते उगत कहीं मैं एक जिला आज भी खफेल सिनी नो मान एक मुझे नहीं हो गया इस तरह से एक मुझे फर्स्ट टाइम हो सी तू खफाता लवाजत मुझे ना हो फिर मैं नोरा को मैं ना नहीं मोटी तो स्टोरी En nou is alles wat ek tot nou toe gedoen het, geniet. Alles geniet. Ik heb zo baie plannen voor ons weer gehad, Bali. Zo baie. Vanaf wat je mij alleen gelost. Alleen. Oh God. Oh God.